0: Dun-dun-dun. Promotion letter.
1: Congratulations.
0: Thank you.
2: Wow.
0: Baby, Bangalore.
1: I hope you said no.
0: No? Main no kyun bolungi?
1: Huh? Mera kya hoga? As in, hamara kya hoga?
0: Baba, tumhare hamare ki baat nahi hai. Tumhe pata to hai ye. Promotion mujhe kitni mushkil se mili hai. I have to go to Bangalore.
1: अगर तुमने डिसाइड कर लिया तो फिर मुझे पूछने क्यों आई?
0: हेलो, मैं पूछने नहीं आई, मैं बताने आई. आई डोंट हैव टू आस्क यू एनीथिंग और मैं जा रही हूँ बैंगलोर. व्हाटएवर.
1: लिसन बेबी,
0: डोंट टॉक टू मी.

0: मैं बैंगलोर नहीं जा रही, बैंगलोर जाना कैंसिल।
1: तो मैं बैंगलोर में क्या करूँ, बैंगलोर तो तुम जा रही हो।
0: मैं नहीं जा रही बैंगलोर, तुम भी नहीं जा रहे हो, कोई बैंगलोर नहीं जा रहा। लिसन यू नॉट गोइंग टू बैंगलोर एंड नो ट्रबल मी नाउ। तुम्हें तो रो रही हूँ मैं, और क्या, तुम्हें जरूर जा रही हूँ।
1: अरे हर बार तो रो रही
0: हूँ, हर बार मैं फीलिंग हो रही हूँ।

अक्सम अदाएं ब्यूटीफुल है। जानती हूँ मैं तुझे, तू कितना ब्लडी फुल है।

0: लोसे महलमा ठिक 8 बजे।
1: होटल टाइटेनिक गंगबु बस पार्क प्रोपाइटर रामचन्द्र महत। मोबाइल 9841616878 98235527763।

0: भनेपछि साइकल लिएर गयो।
1: साइकल लिएर जाँदा जमाना उहाँ मोटरसाइकलमा पुगिसकेछ। एउटा मोटरसाइकल किन्देऊ, बुहारी ल्याएर देखाइदिन्छु। ला
0: किन्देऊ ल।

0: इन्टरनेट, गेट कनेक्टेड, स्टे कनेक्टेड।
1: नयाँ जडानको लागि सम्पर्क 9008-13424 र 9850-14175।
2: शुक्ला गण्डकी एफएम 97.6।
3: शुक्ला गण्डकी टाइम चेक।
4: यति बेला रातिको ठिक 8 बज्यो।

0: को इन्टरनेट गेट कनेक्टेड स्टे कनेक्टेड।
1: नयाँ जडानको लागि सम्पर्क 9028-13-424 र 9058-60-1475।
2: शुक्ला गण्डकी एफएम 97.6।
3: शुक्ला गण्डकी टाइम चेक।
4: यति बेला रातिको ठिक 9 बज्यो।